0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है, एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें, तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX।

0: gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in, शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, जिंदगी को जीने की बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से बातें की तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही गए कि जीने की हम बात कर रहे हैं। और जल को पीने की जब बात होती है तो शुद्धता की बात होती है, और शुद्धता की जब बात होती है तो एक ब्रांड की बात होती है। वो ब्रांड कौन सा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। लेकिन आज मेरे स्टूडियो में खुद चलकर एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप पाते हैं। और जो पीछे अनुभव है मैं देख पा रहा हूं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में आप रहे हैं आयोटा वाटर, प्रेजेंट टाइम में आप हैं, और ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर बीएन ग्रुप में आप जुड़े रहे हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग वेंकटेश नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप रहे हैं नोएडा में, और कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर पतंजलि में आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम है बिस्लरी से भी आप जुड़े रहे। आप हैं मेरे साथ मिस्टर अजीत कुमार सिंह। तो सिंह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। मैं अजीत कुमार सिंह।
0: सर, कहीं कुछ परिचय में कमी रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और जो आपका एक ब्रांड है आयोटा वाटर, जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
1: जी जी जी,
0: तो इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये थॉट कैसे आया और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। ऑफलाइन आपने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो थोड़ी थोड़ी हम बातों को शुरू करेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। आयोटा वाटर एक ब्रांड नहीं, एक सोच है, एक समाज को ध्यान में रख
0: के मार्केटिंग मैनेजर है। और यही चीजें होती है, यही चीजें इंसान को आगे लेकर जाती हैं। ग्रेट
1: जी। एक अपने आप में एक सोच है, एक सोच के तहत हमने एक विज्ञान का जो विषय है उसको हमने अपनाया है इस पानी के अंदर। मार्केट में पानी विगत 20-25 सालों से जो पैकेज ड्रिंक वाटर का मार्केट चल रहा है उसमें हमने एक इनोवेशन का सोचा जो एक जन कल्याण का भी माध्यम बने पानी के साथ साथ, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी बाकी चीजें हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स है। हमारा इंटेंशन ये है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है कि लास्ट माइल तक हमारा पानी पहुंचे, गांव-गांव में घर घर तक हमारे पानी पहुंचे। आज शुद्ध पानी अपने आप में एक विषय है, और पानी का सीधा संबंध आपका
0: हेल्थ से
1: है, स्वास्थ्य से है। और वहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, वाटर कंटेनमेंट के इश्यूज होते हैं। आज बड़े बड़े सोसाइटियों में भी वाटर कंटेनमेंट इश्यूज होते हैं, आए दिन अखबारों के अंदर भी आप पढ़ते रहे होंगे। तो उस चीजों को समाधान करने के लिए तो हमने आयोटा वाटर लेकर आया, जिसमें एक विज्ञान का भी योगदान है, जिस योगदान का नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी।
0: परफेक्ट। ये जो बात है दोस्तों, इस संबंध में हम जरूर जानेंगे एक सोच के बारे में, और जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं ये क्या है, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, दो बातें, इन बातों को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और ये लाइन है जो कहती है कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। हमने ये भी सुना है कि पानी पर भविष्य में युद्ध होगा। युद्ध आज हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। हम युद्ध अक्सर अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं कि पानी की कमी है जिसकी वजह से लोगों में झगड़े हो जाते हैं। अब बात आती है शुद्धता की। जब शुद्धता का जिक्र हो रहा है तो जिक्र इस समय स्टूडियो में हो रहा है अजीत कुमार सिंह जी, जो कि आयोटा वाटर से जुड़े हुए हैं। जिक्र कर रहे हैं एक सोच का, जिक्र कर रहे हैं एक शुद्धता का। तो सर ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर सोच के बारे में मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ जो आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या है, किस सोच के साथ आप डेवलप हो रहे हैं, किस सोच के साथ आप मार्केट में उतर रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई?
1: हमने इस तकनीक में ये रखा है कि पानी का हर बूंद ताकतवर बने
0: जी।
1: उस बूंद को ताकतवर बनाने के लिए हमने नैनो बबल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आपके शरीर में एडवांस हाइड्रेशन को देता है, आपके एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन को जो हाइड्रेशन की जरूरत है, जो एनर्जी की लेवल की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं 60% आपका शरीर पानी से बना हुआ है, उस पानी की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही उत्तम समाधान है आपके आज के दौर में। और हमने ये तकरीबन 2023 से ये सोच स्टार्ट हुई, 2025 में हमने इसको बाजार में उतारा है। और अभी हम दिल्ली NCR में इस चीज को सर्व कर रहे हैं, चंडीगढ़ ट्राइसिटी वगैरह में सर्व कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में सर्व कर रहे हैं, ताकि हमारे लास्ट माइल तक जाए हमारा पानी। और ये तकनीक ऐसा तकनीक है जो हमारे जो त्वचा पे छिद्र है उससे भी 200 times छोटा होता है ये तकनीक। इसके एक बूंद के अंदर अनगिनत जो है बबल्स, जो नैनो बबल्स टेक्नोलॉजी का ताकत है, वो एक बूंद के अंदर मौजूद है, जो आपको ताकतवर बनाता है। आप अगर इसको एक महीने तक यूज करेंगे तो आपको अपने शरीर के अंदर अंतर मालूम पड़ेगा कि क्या ये टेक्निक है, कैसा है, क्या है आयोटा वाटर। तो ये टेक्नोलॉजी एक हमारे तरह से एक समझिए कि एक बहुत बड़ा पानी के अंदर आंदोलन है अपने आप में। और ये एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है भारत का, जिसका पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसके भारत के माध्यम से विश्व को सर्व करने वाले हैं। So we supposed to serve the world across the globe.
0: जी, जी.
1: So this is our the innovation. IOTA is all about innovation.
0: ठीक.
1: नाम भी वैसे ही रखा, I stand for the innovation, O for oxygen, T for technology, A for all.
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप तो मन की बातों को पढ़ लेते, आपने मेरी मन की बात छीन ली मुझसे। और यही मैं जानना चाह रहा था, मेरे श्रोता जानना चाह रहे थे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लकी है IOTA टीम, क्योंकि आप जैसे दिग्गज उनके पास है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: चलिए सिलसिला जो बातों का वो लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में, जल की बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पर जल है तो कल है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी आप पिएंगे तो कल को आप देख पाएंगे। और शुद्धता का जब जिक्र हो रहा है तो जिक्र हो रहा है स्टूडियो में IOTA वाटर का। ये तो विज्ञापन हो गया सर, क्या बात है। चलिए हम भी कम नहीं है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें मेरे यानी गगन के साथ। जो विषय है वो विषय है जल। जल के बारे में बातें हो रही है और एक ब्रांड उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आयोटा वाटर। जल का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है शुद्धता का। अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शरीर का ख्याल रख पा रहे हैं। शुद्धता नहीं है तो निश्चित तौर पर सच बात तो यह है कि दिक्कतें परेशानियां आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगी ही आएंगी। एक एक्सपर्ट के तौर पर एक नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं अजीत कुमार सिंह जी। तो अजीत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: एक सोच के साथ जब इंसान बढ़ता है, आगे चलता है, हम जानते हैं चैलेंजेस जिनको हम कहते हैं कि चुनौतियां आती हैं
1: जी, जी।
0: तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौतियां आई होंगी, कुछ चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों को पार करके मैं समझ पा रहा हूं कि कई सारे आउटलेट आज आपके दिल्ली एनसीआर में हैं और उस सोच के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए प्लीज।
1: देखिए, प्रतिस्पर्धा तो काफी स्वाभाविक होता है। किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, कोई उत्पाद जो होता है, तो उसको वो साकार करने के लिए हमारे जैसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक प्लानिंग हम बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं बाजार के लिए। तो हमारे पास जो आज के टाइम में जो हमारी टीम है वो ये कोई मुझे कहने में संकोच नहीं कि भारत की सबसे अच्छी टीम हमारे पास, जो हमारे सारे सेल्स की टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे ऑपरेशन टीम है, जो हमने प्लांट ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे उच्च कोटि के सारे स्तर हैं। तो हमने स्टैंडर्ड का काफी ध्यान रखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हो वो विश्व स्तरीय हो। और हमारे प्रतिस्पर्धा इसलिए हमारा ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि हम एक

0: यूनिक प्रोडक्ट है। ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है अल्ट्रा वाटर की। ये हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस्टर अनंत कपूर और हमारे जो एमडी हैं मिस्टर अमित कपूर, तो ये हमारा पेटेंट है। आगे आने वाले वर्षों में हम पूरे भारत के अंदर को सर्व करने वाले हैं। उसके बाद हमारा प्लान जो है विश्व स्तरीय पर जाने का है। तो ये जो है हम चाह रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है इसका संपूर्ण लाभ ले और इस विज्ञान का फायदा उठाए, इस विज्ञान को अपने जीवन में तर्कसंगत करें। और जिस तरह से हमारा आने वाला वक्त जो समय जो है हमारे पास बहुत कम बचता है, जब हम काम करते हैं 24 घंटे जब हम काम करते हैं हमारे पास थकान होता है। आज जो स्ट्रेस लेवल हाई है जिस तरह से लोगों का जनमानस का, और एक थका देने वाली जिंदगी है, तो उसमें एक अल्ट्रा वाटर एक बहुत अच्छा आपके लिए समाधान बन सकता है, जो आपको एक ताकत देगा, जो आपको डिटॉक्स करेगा, जो आपको हाइड्रेट करेगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन पे ले जाएगा। तो आप तुरंत जो है अपने आपको रिजुवेनेट महसूस कर सकते हैं।
1: वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मीरानी गगन के साथ। और एक एक्सपर्ट के तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की। अजय कितनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, मजा आ गया। मतलब आप अजीत साहब हमारे एक बहादुर के बारे में बोल दो कि मिलके खुशी हुई, बड़ा अच्छा है गगन के साथ रहता है ये बहादुर। कैसा लग रहा है आपको मिलके मुझे?
0: बहुत मजा आ रहा है।
1: अरे बहुत मजा आ रहा है और भी मजा आएगा। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर सरकार के साथ भी इन्होंने हैंडशेक किया, डिटेल में जानेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से पुनः आप सबका इस्तकबाल में हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गर्मी जब पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में हम सब पानी की ओर भागते हैं। शुद्धता का आप लोग ख्याल रखें, पानी भरपूर पीजिए, पानी नहीं पीते तो तमाम दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। जब आप खेलते हैं भागदौड़ करते हैं तो उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। आपसे अजीत जी, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत कुमार सिंह जी जो कि आयोटा वाटर से हैं और बहुत सारी डिटेल में हमें बातें बता रहे हैं। तो सर स्पोर्ट्स सेक्टर में जो क्वालिटीज हैं आपके आयोटा वाटर की, जब मेरी आपसे ऑफ एयर सिटिंग हो रही थी तो आप बहुत सारी क्वालिटीज गिना रहे थे, कुछ अगर दो चार क्वालिटीज उसके बारे में आप हमें बताएं, एक बात। दूसरी बात, आपका जो प्रयास है वो रंग ला रहा है, हमारी यमुना हम देख रहे हैं कि साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। भारत में वर्तमान समय में जो सरकार है वो भी प्रयासरत है और वो बातें भी आप हमें बता रहे थे कि इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आपकी कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक करार के साथ सरकार के साथ मिलकर आप आगे बढ़े। दो बातें क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किया जो हमारी पेरेंट कंपनी है निको बबल्स, उसके थ्रू हम B2B करते हैं जिसमें हम कई सारी सरकारी परियोजनाओं में जो कई सारी जो सरकार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसमें हम काफी काम करते हैं उस चीजों को लेके। तो उसमें भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट सरकार दे रही है भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया जाएगा समाज कल्याण हेतु उस पर हम कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो ये हमारा हमेशा रहेगा। आयोटा वाटर एक बॉटल पैक हमने बनाया, उस विज्ञान को हमने बॉटल में लाने के लिए सोचा ताकि हर चीज जो है एक व्यक्ति को मिल सके, उसका फायदा व्यक्ति को मिल सके, उसका इस्तेमाल कर सके। ये औद्योगिक क्षेत्र तक पहले निहित था जिसको हम अब आगे जाके एक व्यापार और बाजार के थ्रू एक लास्ट माइल ग्राहक होते हैं उस तक पहुंचाएं। हाँ। तो ये हम लोगों का लक्ष्य है, ये हम लोग का लक्ष्य है और हम धीरे धीरे इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से, उपलब्धता के माध्यम से हर जगह हम इसको उपलब्ध करवाएंगे।
0: ठीक है,
1: अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक।
0: चलिए आप भारत से बाहर निकलें क्योंकि निश्चित तौर पर जब भारत से बाहर निकलेंगे अच्छा करेंगे तो हमारे भारत की एक पहचान होगी आयोटा वाटर के रूप में, क्योंकि हम यहाँ कुछ अच्छा सर्व कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में प्लीज आप मुझे बताइए कि जो
2: अरे आपको बादाम खाने की जरूरत भूल गए, दो सवाल मैंने करे थे, एक का जवाब दिया एक का जवाब नहीं दे पाए। हाँ देखा, मैंने आयोटा वाटर पिया था इसलिए मेरी याददाश्त मजबूत है। तो खैर ये चुप रहिए बहादुर, आप बताइए।
1: बिल्कुल आपका जैसा निर्देश है बादाम जरूर खाऊंगा।
0: अब तो आप दिल पर लगे।
1: तो स्पोर्ट्स ऐसा रहा कि जब मैं भी खुद बचपन से देखता था अंग तालिका जो भी होते थे, जो बड़े खेल प्रतिस्पर्धा होते थे
0: जी, जी।
1: उसके अंदर हम देखते थे अंग तालिका, भारत कहीं से नामो निशान भी नहीं होता, कहीं कहीं कुछ एक चंद स्वर्ण पदक रजत पदक टाइप की चीजें कुछ होती थी। तो स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत सारा चुनौतियां रही है स्पोर्ट्स सेक्टर में, और स्पोर्ट्स में जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या पानी की जो आवश्यकताएं होती है जो आए, तो प्लेन वाटर कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए
0: वो सही नहीं
1: लाभकारी नहीं होता, क्योंकि एक काफी लंबे रेस के बाद आपको पानी होता है जिसके पीछे विज्ञान होता है, आपको कैसे पानी लेना है, कब पानी लेना है, क्या डाइट फॉलो करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में खासकर जो भागने दौड़ने वाले खेल हैं लाइक मैराथन वगैरह हैं, जो अदर रेसेस हैं, उसमें खिलाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बॉडी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आज सारा जो प्रदूषण है, ये सारी चीजें हैं, सब तरफ ऑक्सीजन ही चला रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारे पानी में 36% ऑक्सीजन है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है बाकी पानी के रिस्पेक्ट में।
0: ये क्वालिटीज हैं आयोटा वाटर की, फुलफिल करते हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड।
1: तो ये आपको एक आप सम्मान के आप ये चल सकते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है, एक आपको विकल्प दे रहा है। हाँ। कि जिसके अंदर आप ऑक्सीजन तुरंत अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं और अपने आप को पुनर्संचारित कर सकते हैं।
0: वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे शब्द का आपने यहाँ इस्तेमाल किया, और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी, जो एनर्जी ड्रिंक आप आजकल टीवी विज्ञापन में देख रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये जो एनर्जी ड्रिंक है, यानी कि ये जो एनर्जी का पेय जल है, पेय पदार्थ है आयोटा वाटर, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है आपको मिलेगा जरूर। एक खास सवाल मैं आपसे जरूर जानूंगा क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैंने सुना कि अभी आप एक यूथ को भी कनेक्ट करने जा रहे हैं लोगों को मौका भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक सवाल और इसका जवाब आपसे हम जरूर जानेंगे। आखिर में एक छोटा सा संदेश भी लेंगे कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं आयोटो वाटर के एक्सपर्ट मिस्टर अजीत कुमार सिंह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और पानी पानी पानी पानी पानी भरपूर पीजिए। पानी का इस्तेमाल यानी कि कहते हैं ना कि बारिश का जो पानी है उसको भी आप संचरित करिए, इकट्ठा करिए और फिर उसको रिसाइकिल करके आप कहीं ना कहीं रीयूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं हूं गगन आपके साथ और आई तो वाटर से एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए अजीत कुमार सिंह जी, जो कि कई सारे अनुभव के साथ इस कंपनी में जुड़े हैं और वो अनुभव कहां आ रहा है हम देख रहे हैं, धरातल तक वो जा रहे हैं, लोगों की सोच को जान रहे हैं, अपनी सोच को उनसे वाबस्ता करा रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत कम समय में बहुत सारे आउटलेट इन्होंने यहाँ स्थापित किए और एक सोच के साथ अभी कह रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम आगे जाएंगे और हिंदुस्तान से भी आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। आखिर में एक छोटा सा संदेश और एक बात, आप चाह रहे हैं कि यूथ को आप जोड़ें, चाहे वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हों, इंटर्न के तौर पर या किसी भी क्षेत्र से कोई आए, तो वो एक क्या जरिया हो सकता है कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट हों, क्या एक प्लेटफॉर्म होगा आपका, कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, वेबसाइट वगैरह वगैरह जो आप कहना चाहें।
1: आयोटा वाटर का हमारा अपना वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं iotawater.in पे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है इसी नाम से, प्लस मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है जिसपे आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे से। और वो एक आज जो यंग प्रोफेशनल्स का जो माध्यम है, जो कि हमारे पास जो भारत की जनसंख्या है सबसे युवा देश है हम विश्व के अंदर, और युवा होने से ये सबसे बड़ी फायदा होता है कि आज जैसे मैं 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो जो एक नई पीढ़ी आती है हमारे पास वो एक नई सोच लेके आती है। सोच में उनके भी इनोवेशन होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं। जो 18 से 35 वाला आज वर्ग है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा भारत में है, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। अल्फा बीटा और गामा जनरेशन, जो सारे अपकमिंग जनरेशन है, जैन जी हैं पीछे अपने, तो सारे उनकी एक सोच अलग है। आज रियल लाइफ है, सारा डिफरेंशिएशन है। सोशल मीडिया काफ़ी एक बहुत बड़ा टूल बन चुका मार्केटिंग का, तो इन सब टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जो प्रोडक्ट का

0: जो रीच है, अपने प्रोडक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारियां देनी है, या जो आपका एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया के, तो इस इन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारे जो युवा पीढ़ी काफ़ी संलग्न है और इसका फ़ायदा हमेशा होता है। और मैं इन चीज़ों को हमेशा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आपका चलता ही रहता है, जिसको ATL और BTL हम बोलते हैं, और डिजिटल, लेकिन साथ में जब सोशल मीडिया टूल इसमें मिल जाता है तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत।
0: तो माध्यम हमेशा अच्छा एक होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब बहुत अच्छे उत्पाद को बनाते हैं लेकिन हम उसे पहुँचा नहीं पाते जनता तक, तो उसका बस ये होता है कि उसको मार्केटिंग करने का तरीका जो होता है वो हम चुनते हैं कैसे चुनना है, कि हमें अमेज़न पे जाने की जरूरत है, कि हमें जनरल ट्रेड्स में जाने की जरूरत है,
1: सुनो शारदा पर आने की जरूरत है, ये भी आप मेंशन करें।
0: और हमें सुनो शारदा पे आने की जरूरत है गगन जी के साथ।
1: अरे सर शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हाँ, इसको कहते अपने मुंह क्या कहते, मिठू बनना मिया, मिठू बनना। मैं पूछ रहा था कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। चलिए सर, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, आप बहुत यही मुस्कुराते रहे, क्योंकि ये मुस्कुराहट आप ही लोगों से कनेक्ट करती है। मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अजीत कुमार सिंह जी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, आयोटा वाटर के बारे में डिटेल में बातें बताई, और एक जिंदगी का सार ये कि जल को व्यर्थ ना बहाएं,
0: बिल्कुल
1: है ना। ये मैं एक सार आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पानी की टंकी हम लगा लेते हैं, 500 रुपए का अलार्म लगाना भूल जाते हैं, जो कि आपको एक इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया उसको बंद कर दें। तो ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, पानी को व्यर्थ न बहाएं, पानी भरपूर पीजिए, जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लाभकारी है, जल है तो कल है। तो अजीत कुमार सिंह जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गगन के साथ, और गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:04 हो चुके, 21 तारीख है, यानी कि मंडे का दिन है। मंडे का दिन बोले तो ट्रैफिक का दिन, मंडे का दिन बोले तो उत्साह के साथ काम पर जाने का दिन, या कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टी हो जाती और बॉस नाराज हो जाते तो बेटा ऐसा करो तुम्हारी छुट्टी कर देते। क्या खास जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद गगन के साथ सुनू निगम की आवाज में शुक्राना अल्लाह कुर्बान फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू सुरुशारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

क्या बात इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो चुके हैं, 21 तारीख है, बोले तो सोमवार का दिन। जाहिर सी बात है कि मंडे का दिन जब आता है तो निश्चित तौर पर ऑन रोड हम देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। मंडे हर कोई पहुंचना चाहता है। मंडे अगर आप इधर उधर से छुट्टियां मनाकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आज की छुट्टी लेना नहीं चाहेंगे। आज तो कम से कम एटलीस्ट आप ऑफिस पहुंचना ही चाहेंगे। और हम देखते हैं कि ऑन रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से अननेसेसरी लोग अनावश्यक तौर पर अपनी लेन को फॉलो नहीं करते, ओवरटेक करते हैं। जब आपको दिख रहा है कि गाड़ियां लंबी लगी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, आप हॉर्न बजाते चले जाते हैं और वहीं से दिक्कतें परेशानियां आपको भी और आपकी वजह से सामने वाले को भी होते हैं। लेकिन जब आप आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ये बात ट्रैफिक की मैं आपको हर रोज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शाम को कालिंदी कुंज की जब मैं बात करता हूं तो निश्चित तौर पर कालिंदी कुंज का जो जाम है, जाम के जाम से हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही शारदा विश्वविद्यालय के आगे यानी कि 3 नंबर गेट के आगे, 4 नंबर गेट के आगे, 2 नंबर 1 नंबर गेट के आगे जाम की स्थिति बनी रहती है सुबह और शाम यानी कि पीक आवर्स में। हाँ, शारदा विश्वविद्यालय के जो एम्प्लॉय हैं, अगर आप चाहें तो गेट नंबर 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वैकल्पिक रास्ता है, वहां पर आपको जाम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी शारदा अस्पताल होने के नाते हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम एम्बुलेंस को रास्ता दें और गलत दिशा में गाड़ी न चलाएं क्योंकि जाम वहीं से शुरू हो जाता है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मौसम के मिजाज के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुरुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार।

0: अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है ना। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, स्वस्थ शरीर होगा तो निश्चित तौर पर आप किसी काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए 9 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पोषण माह चल रहा है और ऐसे समय में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों की सेहत के लिए उनको मोटिवेट करें। और जब युवा स्वस्थ होगा तभी हम भारत यानी कि विकसित भारत की बात कर पाएंगे और तभी हम अपनी बात को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। चलिए कुल मिलाकर हेल्दी रखिए अपने आप को, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोचिए और सब कुछ अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आपकी फेवर में आएंगे। कल्पना करिए कि आपकी तबीयत खराब है, आपके पास बहुत सारा रुपया है, आपने बहुत सारा रुपया कमाया लेकिन आपकी तबीयत में वो शन शन खर्च हो गया क्योंकि आपने ना दिन देखा ना रात देखी, अपनी सेहत को आप गवा बैठे। लेकिन आपके पास रुपया कम है लेकिन आपके पास हेल्थ है तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। चलिए पोषण कुपोषण से निकल कर आते हैं, बात करते हैं मौसम के मिजाज की, वेदर अपडेट क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान अनुमान है। ओके, दिन में तेज धूप खिलेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी कि वर्षा की जो संभावना है वो 0% है। हाँ, कुल मिलाकर खुले में टेंट लगा सकते हैं। ओके, और हवा में नमी यानी कि 55% रहेगी और उत्तर दिशा से 5 से 8 किलोमीटर घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। और क्या खास जाने की जरूरत, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
9: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
8: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ 9:34 हो चुके हैं। 21 तारीख है, बोले तो मंडे का दिन। और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी जो काया है वो निरोग रहे, अर्थात हम सब हेल्दी रहें। क्योंकि सच बात तो है कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। इसीलिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत में योगदान दे सकता है। अपने आप को नशा फ्री रखना है, नशा करना है तो अपने काम का करिए, अपने हेल्थ का करिए, जिम जाने का नशा करिए और देखिएगा निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ में चेंजेस नजर आएंगे जरूर। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो टोल कटता है। हाँ, आपका कटता है, टोल कटता है, मैंने देखा है टोल कटता है, लेकिन आने वाले समय में टोल कटना ये मतलब पुरानी पद्धति हो जाएगी। हाँ, मतलब रुकना, रुकने की बात हो रही, कटेगा तब भी टोल। यानी कि सैटेलाइट के जरिए आने वाले समय में ऐसा होगा कि सैटेलाइट आपकी उस जो नेम प्लेट है उसको रीड करेगा, उसके बाद वहीं से आपका टोल कटना शुरू हो जाएगा। यानी कि बैरियर्स नहीं होंगे, ब्रेकर्स नहीं होंगे। अब एक और खास खबर हमारे सामने आ रही है तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। आने वाले समय में सुनने मारा कि फास्टैग का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि बिना स्टिकर बदले वन टैग से आप बदल सकेंगे बैंक, है ना, एक अच्छी खबर। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो निकल कर यूं सामने आ रही है तो हमें लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं। फास्ट बदलने की जो कहानी है अब बहुत पुरानी होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि फास्टैग का बैंक बदलना आपको उसी तरीके से आसान हो जाएगा जैसे नंबर आपका वही रहता है और आप कंपनी बदल देते हैं, पोर्ट कर लेते हैं। फास्टैग पोर्टेबिलिटी सर्विस शुरू की गई है जिसे वन टैग नाम दिया गया है। तो इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो और ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। गगन के साथ

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

विभोर और नेहा कक्कर की आवाज में लेके काली कार घुमाएंगे। काली कार लेके घूमना ठीक है, लेकिन काली फिल्म मत लगा देना वरना लेने की देनी पड़ जाएंगी। गुड मॉर्निंग। सच बात तो ये कि मुझे लगता है कि यातायात के जो नियम कायदे कानून है उनका अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी गाड़ी को पुलिस वाले भाई साहब यानी कि ट्रैफिक वाले भाई साहब अननेसेसरी रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कहीं कुछ उनको लगा, दिक्कत है, परेशानी है, आपने कोई काले फिल्म लगा रखी है या कुछ और, तो दिक्कतें परेशानियां हो जाती हैं। जैसे हमने देखा है कि अपने नाम के बारे में लिख देते हैं, अपनी जाति के बारे में लिख देते हैं, या जो नेम प्लेट्स होती हैं जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो ना करते हुए कुछ और अगर आप लिख देते हैं तो दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए और सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं यानी कि समवन इज वेटिंग फॉर यू। अजी कितनी अच्छी हो गई अंग्रेजी तुम्हारी मेरी छात्र के। हाँ, I love you too. चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आने वाले समय में अब आपको टोल प्लाजा नहीं मिलेंगे। इस सर्विस पर काम किया जा रहा है कि यानी कि नेम प्लेट के जरिए और सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से आपका टोल कटना शुरू हो जाएगा। इस सर्विस पर काम किया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात बताई थी कि फास्ट टैग को अब आपको बदलना नहीं पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से पोर्टेबिलिटी का हम जिक्र करते हैं, नंबर आपका वही रहता है और दूसरी कंपनी आप बदल देते हैं, ये सर्विस फोन में बहुत समय पहले आ चुकी है। अब ऐसी एक सर्विस आ रही है यानी कि फास्ट टैग आपका आपके पास रहेगा और आप किसी दूसरे बैंक में जा सकते हैं, उसकी सर्विस ले सकते हैं। वन टैग के माध्यम से ऐसा आपको करना होगा और एक ऐप है जिसके जरिए आप ये जो पूरी प्रक्रिया है राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए ये आप कर सकते हैं। Walk deck, Judas and Breakers, so don't go anywhere, stay tuned. All your Surushada 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ रांझणा। रांझणा फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आए है जसविंदर सिंह की आवाज, शिराज इरशाद कामिल के बोल, A.R. रहमान का म्यूजिक, सोनी का लेबल, सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

0: दे शॉट, क्या बात है क्या बात है। करंट के जो शॉट लगते हैं माशाल्लाह वो भी जबरदस्त लगते हैं। कभी कभी किसी को लगता है, हाँ कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसलिए बिजली से छेड़छाड़ ना करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली शो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई फास्टैग के बारे में, टोल प्लाजा के बारे में, यानी कि टोल प्लाजा अब आने वाले समय में पुरानी पद्धति हो जाएगी क्योंकि आपका टोल जब कटेगा तो सैटेलाइट के माध्यम से कटेगा। चलिए ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में आने वाले समय में एक और मेला,
1: मेला दिलों का आता है।
0: अंताक्षरी नहीं शुरू करनी थी, अच्छा सिर्फ बात सुननी थी।
1: तो बताओ क्या खबर लाए हो कालिया?
2: मेरा नाम गगन है।
1: अच्छा ठीक है, क्या खबर लाए हो बेटा गगन?
0: चलिए खबर ये कि आने वाले समय में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां चल रही हैं और आने वाले समय 25 से लेकर 29 सितंबर को ये एक्सपो में आयोजित होने जा रहा है और इसकी तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा के JBU यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी परिसर में 25 सितंबर से एक्सपो मार्ट से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की, या यूं कहें कि जायजा लिया। और वहीं पर उन्होंने प्रेरणा विमर्श कार्यक्रम का समापन हुआ उसमें शिरकत की और उन्होंने नारी सम्मान युवा स्वाभिमान पर जोर दिया। तो कुछ खास बातें मुझे लगा कि इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। और अभी आने वाले समय में जब हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि एक त्योहार जाता है तो दूसरे त्योहार का हम वेलकम कर रहे होते हैं, कंपनियां भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रही हैं, अपनी तैयारियां कर रही हैं, एक रणनीति बना रही हैं। कुछ जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें बड़ी महंगी हुई थी, लेकिन बाइक और ट्रैक्टर पर महंगाई हुई थी, लेकिन अब उन्होंने त्योहारों से पहले उसके रेट घटा दिए हैं।
1: कुछ तो गड़बड़ है दया।
0: नहीं, हमने बोला ना ये रणनीति होती है उनकी।
1: अच्छा ठीक है, लेकिन त्योहार पर कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़ा सब लेने का अपना ही मजा है।
0: आए हाय टोनी बाबा, ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

प्यार में तो सही है, अदरवाइज बिगड़ना सेहत के लिए सही नहीं है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मिले रहो, अनुमति फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हम संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, सौ में चमके न्यारा वो, सौ में चमके न्यारा वो जो अपना फर्ज

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों 9वां राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है जो कि 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी शुरुआत 2018 से की गई थी और ये अभियान हर साल सितंबर महीने में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार के अभियान की बात करें तो इसका औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से किया गया। और इस वर्ष 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की जो थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी हम सबकी जिम्मेदारी, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है देश के करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, शिशु देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में मजबूत करना है। और आंगनवाड़ी केंद्रों का यही काम होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शुरुआती शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, उनको कराया जाए, साथ ही साथ उनको पोषण आहार दिया जाए और जो गर्भवती महिलाएं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके साथ चर्चा की जाए, गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और जब वो पैदा हो तब कैसे उसका ख्याल रखा जाए, बहुत सारी बातों की जानकारियां उनको वहां पर दी जाती हैं। टीकाकरण भी किया जाता है और समय समय पर बैठकें भी होती रहती है जिसमें खान पान की बातें होती रहती हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना है। अक्सर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हर वक्त थकान सी बनी रहती है, तो ये सब बातें वहाँ उनको बताई जाती हैं किस तरह से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं डॉक्टर वेबी शर्मा जी जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और खासकर वो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करती हैं। तो डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें, बच्चों में भी होती है खून की कमी, एनीमिया, तो इसका रीजन क्या है और किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है?
1: खून की कमी यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीजन है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में

0: खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी। और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीजन हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी, तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
0: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीजन का पता चल जाए। जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए, जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाय डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोज कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम, अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपके सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
0: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए। लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में जरूर से जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं सर वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
1: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं परिवार वाले हैं?
0: देखिए, न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की, क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा 7 या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टीज और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार ये हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले माता हैं वो कैसे रखेंगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
5: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा, और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर, और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
6: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
5: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
6: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
5: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
6: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठिशुम ठिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
5: क्या कहा तुमने?
6: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
5: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी, और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
6: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया।

0: जहाँ जहाँ पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा। जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: पेट

0: के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। जी हां किसान मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती किसानी की नई नई जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके। और किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन योजना की। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं और इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि बात की जाए कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए और कितना खर्चा इसमें आएगा शुरुआती दौर में, तो आपको बता दें कि यदि आप शुरू में 10 पेटी के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन योजना के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। किस्सा रहेगा रामायण का।

0: किसान मित्रों, अभी आप केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, आज के समय में फसल की बेहतर पैदावार पाने के लिए कृषि यंत्रों और मशीनों का जमकर उपयोग हो रहा है। अब तो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक का काम कृषि यंत्रों से ही किया जा रहा है। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रा रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चलित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कृषि यंत्र और मशीनें कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि यंत्र और मशीनों के उपयोग से कम समय में कम श्रम के साथ और कम लागत से अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा बीज, उर्वरक, पानी और कृषि रक्षा दवाओं का उपयोग भी इन्हीं कृषि यंत्रों और मशीनों की मदद से किया जाता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग समय पर कृषि कार्य संपन्न करने में मददगार है और बड़े स्तर पर कृषि कार्य करना इनसे आसान होता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाजारीकरण तक के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कृषि यंत्रों और मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इन यंत्रों पर किसान भाइयों का काफी पैसा खर्च होता है, इसीलिए कृषि यंत्रों के प्रयोग और रखरखाव पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि यंत्रों की आयु बढ़ती है बल्कि कृषि यंत्रों के रखरखाव की लागत में कमी के साथ साथ समय की भी बचत होती है। किसान मित्रों, कृषि कार्य करने के बाद कृषि यंत्रों को साफ सुथरे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। कृषि यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रयोग करें और विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से उनके सभी पुर्जों की जांच कर लें। यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह से ज्ञान और उसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत को कार्य करते समय पास रखें। कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले ठीक प्रकार समझा दें कि किस प्रकार कार्य करना है। कार्य करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो कुशल मिस्त्री की ही सहायता लें। और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कृषि यंत्र और मशीनों के पास ना आने दें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का रखरखाव और उनका उपयोग करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि यंत्रों के रखरखाव और उनके उपयोग की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और किस्सा रहेगा लवकुश का।
1: और हम दर

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी, किस्सा था लव कुश का। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों का चौमुखी विकास करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान बागवानी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में देश के हमारे बहुत से किसान भाई बागवानी से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों, साथ ही मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और हमारे सीमांत किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर। किस्सा रहेगा महाभारत का।

ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जाँच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.
5: Hi, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-66666 पर संपर्क करें।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, उनके हक की बातें हो रही हैं और उन्हीं के संबंध में लगातार बातें हम यहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमें दूसरे स्टेशंस का भी सहयोग मिल रहा है। आइए अब हम सुनते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत ये श्रृंखला।

0: आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे।
1: अरे अरे ममता जी, किसको पीछे छोड़ने चली आज?
0: अरे मैं तो बस गुनगुना रही हूँ।
1: देखिए भाई, अगर मुझे पीछे छोड़ने की बात हो रही है तो मत भूले कि आज के हिंसा के नव प्रोग्राम में मैं ही आपका साथ देने वाला हूँ।
0: नहीं नहीं सुशील जी, मैं बस इस गाने को गुनगुना कर अपने मन को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे खुलकर इस आसमान में उड़ना है, बिना किसी बंधन के आजादी से आगे बढ़ना है और इस पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देना है।
1: ममता जी, आप तो शायद केवल गाना गुनगुना रही थी, पर वास्तव में अधिकतर लड़कियां यही ख्वाब देखती है कि बिना किसी बंधन के वो आजादी से अपना जीवन जी सके, पर ऐसा हो नहीं पाता है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों पर तरह तरह के सामाजिक, व्यवहारिक, भावनात्मक जैसे कई बंधनों से बांधने का प्रयास किया जाता है।
0: दोस्तों, हमारे समाज में हर महिला हिंसा का शिकार है, कोई किसी तरह से तो कोई किसी तरह से। समानता सिर्फ इतनी है कि हर कोई इस हिंसा पर चुप्पी रखता है, यानी किसी से नहीं बोलते, और जिससे हिंसा को और अधिक बल मिलता है और महिला बस दबती ही जाती है।
1: ममता जी, आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से एक महिला को अपनी ऊपर हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर बार रोक दिया जाता है।
0: दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा पितृसत्ता, जो कि हर परिवार और समाज में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देता है, जो कि हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। हर महिला को पुरुष के अधीन होकर काम करना होता है, जिस कारण महिला हमेशा से ही पीछे रहती आई है और समानता की बातें बस बातें ही रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, पुरुष प्रधानता की जड़ें हमारे समाज में इतनी गहरी हो चुकी है कि ये एकदम से तो खत्म नहीं हो सकती, पर यदि हम प्रयास करते रहे तो जरूर हम सफल होंगे।
0: हाँ, और हमें प्रयास किसी एक का नहीं बल्कि हर उस कारण को खत्म करना है जो हमारे समाज में हिंसा को बढ़ावा देते हैं या जिनसे हिंसा करने वालों को बल मिलता है। दोस्तों, कारण बहुत से हैं, पर सबसे बड़ा कारण हमारा समाज है और समाज हमी से तो बनता है। तो यदि हमें हमारे समाज की सोच को बदलना है तो हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए।
1: ममता जी, हिंसा के और भी बहुत से कारण हैं, जिसमें दहेज, हमारी रूढ़िवादी सोच, पुरुष प्रधान समाज आदि कई सब हैं। पर हमेशा से हम यही देखते और सुनते आए हैं कि महिलाओं को ही आखिर में चुप करवा दिया जाता है, या वो खुद हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय चुप हो जाती है। आखिर ये चुप्पी क्यों?
0: जरूर जानेंगे सुशील जी, वो भी आज के आमंत्रित मेहमान से।
1: मेहमान? पर आपने तो इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने अगर आपको बता दिया तो आप डर के मारे प्रोग्राम छोड़कर ना भाग जाएं।
1: डर? कैसा डर? आप तो इसे कह रहे हैं जैसे आप मुझे यहाँ से भगाने वाली हो।
0: बिल्कुल सही समझे हो आप, मैंने आज के इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है।
2: श्रोताओं नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं टिहरी जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट जी। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद आपका।
2: तो मैम, सबसे पहले ये आपसे हम जानना चाहेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हिंसा को लेकर के आखिर चुप्पी क्यों है हमारे समाज में, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप टिहरी जिले में काम कर रहे हैं।
3: देखिए, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उसमें चुप्पी के मुख्यतः तीन कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि कई बार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध कारित किए जाते हैं वो परिवार का ही सदस्य होता है
2: जी।
3: तो ऐसे में अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अगर पति पत्नी की घरेलू हिंसा है तो उन्हें लगता है कि परिवार ना टूट जाए। अगर घरेलू यौन अपराध है तो शर्म का लिहाज और सामाजिक वो जो प्रतिबंध होते हैं। तो परिवार के अंदर अपराधों का कारित होना एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और इवन जो यौन अपराध है उसमें अधिकतर केसेस महिला की जान पहचान के या एक्सटेंडेड फैमिली के इस तरह के ही होते हैं
2: जी। जी,
3: तो परिवार में अपराध होना एक बड़ा कारण है
2: जी।
3: दूसरा कारण है जो सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी को जोड़ लिया जाता है। अगर महिला अगर पीड़िता है तो उसको कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिलती, एक शर्म का एहसास किया जाता है, विशेष रूप से अगर यौन अपराध हो
2: जी।
3: तो एक बदनामी के डर से, या अगर अविवाहित पीड़िता है तो भविष्य में शादी में दिक्कतें ना हो, या किसी अन्य प्रकार की जो पारिवारिक प्रतिष्ठा में पीड़िता है तो भविष्य में शादी में दिक्कतें ना हो, या किसी अन्य प्रकार की जो पारिवारिक प्रतिष्ठा में कमी को, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला को इस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है किसी क्राइम के पश्चात। तो हालांकि अब महिलाओं का नाम गोपनीय रखने के लिए काफी नियम कानून आ चुके हैं और विशेष रूप से अगर नाबालिग हो तो उनकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाती है ताकि महिलाएं अपने विरुद्ध हो रहे अपराधों के लिए आगे बढ़े। तीसरा एक मुख्य कारण जो है, तो तीसरे कारण पे अगर मैं आऊँ तो वो अपने विधिक अधिकारों की जानकारी न होना, मतलब जानकारी का अभाव, उनको अपना पता ही नहीं है कि क्या क्या लीगल राइट्स उनके हैं। जैसे अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें, अधिकतर महिलाएं अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार अभी भी नहीं लेती हैं।
4: बिल्कुल।
3: या कई महिलाओं को लगता है कि इसमें पुलिस क्या करेगी, कई बार उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनके पास हेल्पलाइन की सुविधा है या हेल्प डेस्क की सुविधा है या काउंसलिंग भी होती है या जो अन्य अधिकार हैं, जैसे तलाक के बाद जो अधिकार मिलते हैं, जो इवन कई महिलाओं को ये भी जानकारी नहीं होती

0: कि तलाक के बाद भरण पोषण का पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं विधिक अधिकारों की जानकारी की कमी भी एक तीसरा कारण है जो
1: जी
0: महिलाओं को सामने आने से रोकता है।
1: जी जी मतलब आपने सही पक्ष बताया है कि ये सब चीजें हमारे समाज में हैं। क्यों ऐसा है, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है? क्या हर चीज के लिए महिला की जिम्मेदारी है कि अगर खुद वो पीड़ित है और फिर भी उसको अपने परिवार की सोचनी है, उसको सोचना है कि परिवार एकजुट से रहे, जबकि परिवार का ही व्यक्ति उसके साथ गलत कर रहा है?
0: देखिए, कोई भी सामाजिक व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती, तो
1: बिल्कुल
0: कई सैकड़ों वर्षों के पश्चात कोई व्यवस्था एग्जिस्टेंस में आती है।
1: जी
0: रातों रात कोई क्रांतिकारी परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में नहीं आते।
1: बिल्कुल
0: ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो महिलाओं के चारित्रिक प्रश्न उठाया जाना या सामाजिक प्रशिक्षण से उसको जोड़ के देखना, या महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी डालना कि उनको अपने आप को नैतिक कसौटी पे बार बार खुद को खरा उतारना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है।
1: जी
0: क्योंकि अगर हम सामाजिक इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं, तो जो भी नैतिक मूल्य है उनको उनको आगे बढ़ाने का कर्तव्य महिला और पुरुष का बराबर है। महिला
1: बिल्कुल
0: के ऊपर कोई एक
1: अलग से जिम्मेदारी नहीं है।
0: एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपकी नैतिकता में कोई कमी है तो आपकी अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लग जाते हैं। तो बहुत ही गलत, और जिसे मैं कहूंगी एक रिग्रेसिव सोच है, एक पीढ़ी को पीछे धकेलने वाली सोच है।
1: जी जी जी
0: और जो नैतिकता है, जो मूल्य है, जो संस्कार है, वो हमें पुरुषों में भी और महिलाओं में भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से महिलाओं को अपेक्षा करते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से रहें या ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि महिला ने किसी भी प्रकार के कपड़े पहने उसे इज्जत दी जाए।
1: बिल्कुल
0: मतलब उसको उसके चरित्र से जोड़ के ना देखा जाए, एक महिला की स्वतंत्रता है।
1: जी बिल्कुल। टिहरी जिले में आप काम कर रहे हैं और काफी सारे केसेस यहाँ पर आए भी हैं। जब एक यौन हिंसा तक बात पहुंची है तो कई महिलाएं आगे आई भी हैं, लेकिन कई सारे केसेस में ये भी हुआ है कि महिला केस फाइल करने के बाद कोर्ट में जाके अपना केस वापस ले लेती हैं। आप क्या लगता है क्यों ऐसा होता होगा और क्यों मतलब ऐसा करती हैं महिलाएं? क्या उन्हें
0: देखिए,
1: कानून
0: कहीं ना कहीं ये केस टू केस बेसिस पे होता है। कोई मैं ऐसा जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकती जो सब पे एक तरह से लागू होता है। हर महिला की अपने परिवेश होता है, अपना परिवार होता है, अपनी परिस्थिति होती है। कई बार वैचारिक मतभेद के कारण FIR होती है, बाद में सुलह हो जाती है, पति पत्नी के बीच, तो FIR वापस लेना पसंद करती है। कई बार हो सकता है परिवार दबाव भी डालता हो सकता है उन्हें स्वयं लगता हो कि अब मुझे केस नहीं करना, मेरी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। कोई ऐसा जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है जो सभी पर एक प्रकार से लागू होता हो।
1: हाँ,
0: हर महिला की अपनी अलग परिस्थिति होती है
1: जी।
0: और अधिकतर केसेस में जो मेरा अनुभव बताता है कि महिलाएं FIR बहुत मजबूर होके करती हैं। शुरुआत में बहुत दुर्लभ ही कोई होगा जो एकदम अपने पति पे या उस पे मुकदमा करने
1: का परिवार में बिल्कुल
0: काफी प्रताड़ित होने के पश्चात ही महिलाएं ऐसा कदम उठाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि उनका परिवार जुड़ रहा है, विशेष रूप से अगर बच्चे हैं और उनके परिवार वाले उनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है या आपसी समझौता या आपसी सुलह हो जाती है, तो कई बार वो लोग प्रेफर करते हैं कि मुकदमा
1: जी
0: ना बढ़ाया
1: जी। थोड़ा सा कानूनी जो सुरक्षा हम बोलेंगे महिलाओं को दी जाती है, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे?
0: देखिए, हिंसा से पीड़ित महिला के प्रति कानून में काफी प्रावधान है और काफी संवेदनशीलता से उसको डील किया जाता है। अगर सामान्य मारपीट है तो उसमें मेडिकल कराने के बाद जो भी मारपीट हुई है उसके आधार पर मुकदमा कायम होता है। अगर घरेलू हिंसा है जो पति के द्वारा की गई है तो उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम पिक्चर में आता है। अगर हिंसा के साथ साथ यौन अपराध या बलात्कार भी हुआ है तो उसमें अलग धाराएं हैं। उसमें फिर कई प्रकार की विधिक अधिकार अन्य प्रकार के, अगर कोई महिला SC ST वर्ग से है और उसके साथ अपराध कारित होता है तो उसमें अलग प्रोटेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। अगर नाबालिग है तो उसमें पॉक्सो के अधिनियम लग जाते हैं। काफी विस्तृत चर्चा है जो अपने आप में शायद 4 से 5 घंटे
1: लेगी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बहुत विस्तार से मैं नहीं बता सकती, लेकिन ब्रॉडली ये है कि जो भी हिंसा के शिकार महिलाएं हैं उनकी चोटों के आधार पे या जो भी उनका मेडिकल होता है, मेडिकल एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंसा में, जो भी आपको लीगल रिलीफ मिलता है उसमें एक मेडिकल काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कई बार महिलाएं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आती हैं कि हमारे साथ मार पिटाई हुई थी, पर तब तक मेडिकल में कोई चोटें नहीं आती हैं। तो कम से कम मेडिकल अगर महिलाएं तत्काल करवा लें, FIR करनी है नहीं करनी है उस पर 10 दिन तक विचार करती रहे, व्यक्तिगत विषय है, लेकिन चोटें लगते ही आपको अपना मेडिकल अवश्य करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में वो एक आपका
1: प्रमाण बना रहे,
0: प्रूफ रहे कि आपके साथ वास्तव में पिटाई या हिंसा या चोट आपको लगी थी।
1: जी जी जी जी। थोड़ा सा कुछ हेल्पलाइन नंबर आप हमारे समुदाय में देना चाहेंगे लोगों को, महिलाओं को, जिससे वो अपनी
0: महिलाओं के लिए ऑल ओवर इंडिया है हेल्पलाइन नंबर। वैसे सबसे कॉमन हेल्पलाइन नंबर है 112-112 जिस पर आप 24 घंटे पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए 1090 ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है। और बच्चों से संबंधित कोई घटना हो जिसकी आप सूचना चाइल्ड लाइन पे देना चाहें तो 1098 ये बच्चों से संबंधित है। वैसे जो सबसे अधिक याद किए जाने योग्य है जिसको 100 नंबर पे हम डायल किया जाना कहते थे पहले, तो वही 100 नंबर अब 112 इमरजेंसी नंबर बन गया। तो डायल 112 अगर आप करें तो लगभग सभी समस्याओं को आप उस पर नोट करवा सकते हैं और बाद में संबंधित अधिकारी को उसे अग्रसारित कर दिया जाता है।
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका करेंगे, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, हमारे श्रोताओं को काफी सारी जानकारी दी, धन्यवाद।
2: दोस्तों उम्मीद है इस बातचीत से आपको जरूर हिम्मत मिली होगी, ना तो हिंसा सहना है और ना ही हिंसा होते देखना है, और यदि आपके आसपास किसी भी महिला के साथ हिंसा होती है तो आपको उसे रोकने में आगे आना है।
3: साथियों हमारे समाज ने महिला को हमेशा से बेड़ियों में बांधने का प्रयास किया है। एक लड़की को मायके में कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन है, ससुराल ही एक लड़की का अपना घर होता है। और इन्हीं सब बातों को सुनते सुनते बड़ी होती आई लड़की भी जब यही मानने लगती है तब वही ससुराल वाले कहते हैं कि बहू तो पराए घर से आई है। ऐसे में लड़की का अपना घर कौन सा है?
2: एक लड़की को बचपन से ही चुप रहना, कम बोलना, कम हंसना, उछल कूद न करना जैसे न जाने कितने ही दायरों में समेट लिया जाता है, और यही संस्कार जो हमारा समाज एक लड़की में भरता है वही सब एक महिला को दर्द और अपने ऊपर हुई हिंसा पर चुप रहने की वजह देते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। कोई महिला हिंसा का शिकार यदि होती है तो पहले तो वो खुद ही इन बातों को छुपाने का प्रयास करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बातें उसके लिए शर्मनाक हैं, जबकि शर्म तो हिंसा करने वाले को ही होनी चाहिए।
2: क्योंकि हमारा समाज ऐसी बातों में हमेशा पीड़ित महिला के साथ खड़े होने के बजाय उसको घृणित नजरों से देखता है। खुद परिवार और आसपास के लोग उसे डरा धमकाकर चुप होने पर विवश कर देते हैं जिससे महिला को चुप होना ही पड़ता है। और यदि कोई महिला हिम्मत दिखाकर समाज के खिलाफ जाकर पुलिस तक चली जाती है तो भी बात को दबाने का प्रयास जारी रहता है जिससे महिला कमजोर महसूस कर खुद ही पीछे हट जाती है और यहीं पर हिंसा करने वाले को और अधिक बल मिल जाता है।
3: दोस्तों एक महिला कमजोर तब पड़ती है जब खुद उसका परिवार उसके साथ खड़ा नहीं होता और वह अपनी किस्मत को दोष देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती।
2: पर साथियों चुप होना या पीछे हट जाना समस्या का हल नहीं है। आज के कार्यक्रम में आपने अभी हमारे मेहमान विशेषज्ञ की बात सुनी और एक पीड़ित महिला की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी जिसे प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं सरकार द्वारा तैनात होते हैं।
3: और इसके अलावा कोई भी महिला अपने नजदीकी पुलिस थाने में या जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। और इसके साथ ही साथ जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से भी एक महिला को पूरी सुरक्षा के साथ मदद मिलती है।
2: ममता जी ये सब जानकारी तो बहुत जरूरी है हमारे सभी श्रोताओं के लिए कि कहाँ शिकायत करे और कौन आपकी मदद करेगा, पर मदद भी तो तभी करेगा जब कोई महिला आगे आकर अपने ऊपर हुई हिंसा के बारे में बताए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसकी वजह से परिवार या अन्य किसी पर कानूनी कार्रवाई की नौबत आए।
3: सुशील जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर हम अपने सभी श्रोताओं को यह भी जरूर बताना चाहेंगे कि यदि आपके साथ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत सामान्य तौर पर हिंसा होती है और आप कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहती तो इसमें किसी पर भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती बल्कि केवल महिला की सुरक्षा और सम्मान करने का आदेश दे दिया जाता है और यदि आदेशों का पालन नहीं होता तो उस पर फिर एक्शन लिया जाता है।
2: अच्छा फिर तो कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले परिवारों में भी यह भय होना ही चाहिए।
3: बिल्कुल, और यदि किसी महिला को जान से मारने या आत्महत्या करने पर मजबूर करने की कोशिश की जाती है तो फिर कानूनी कार्यवाही जरूरी हो जाती है। और इसमें तो मेरा मानना है कि हमारे समाज को भी महिला के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: दोस्तों अब समय हो चला है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का, पर आप ये जरूर सोचें कि सदियों से हिंसा सहती आई महिला आखिर कब तक चुप रहेगी। उसे न्याय तभी मिलेगा जब वह अपनी आवाज बुलंद करेगी। और हम सभी को हिंसा

0: महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंसा को नो कहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM. Suno Sharda.
0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
3: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
2: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: हाँ माँ जी।
5: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं, उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है,
इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया।
6: नमस्ते आशा दीदी सब ठीक बा।
5: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना।
6: जी दीदी जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करें जैसे कि पानी के ड्रम कूलर फ्रिज ट्रे
7: और आसपास कहूँ भी टायर नरिवल खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
6: बहुत

0: के बुखार से बची तो बेगम। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: ओले ओले ओले, शोनक। हेलो, कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में आप सबका। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जी और कलावती सोनी जी ने।
3: आप लिखते हैं, आपके काम पर टीका टिप्पणी करने वाला इंसान ही असल में आपका अच्छा सलाहकार होता है
2: जी,
3: क्योंकि वो आपकी कमियां दूर करने में अहम भूमिका निभाता है
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुविचार के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और सही उत्तर देने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार से हैं।
3: रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। आपने लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हम परिवार के सभी सदस्य आपके ज्ञान और मनोरंजन से भरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे घर पर दो नन्हे मुन्ने बच्चे ऋषभ और कनक भी आपके उमंग कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सच में बहुत आपके आभारी हैं। आइए सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से। और लिखने वाले हैं रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर और ओजस गुर्जर। आप सबने मिलकर लिखा है हमें, कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। मत बांटो इंसान को कविता सुनकर देशभक्ति की भावना जागृत हुई और हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ।
2: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए। आइए अब सुनते हैं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे महान लेखिका और सामाजिक कार्यकर्त्री हेलन केलर के बारे में। उनका पूरा नाम था हेलन एडम्स केलर।
2: उनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अलाबामा में हुआ। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थीं। जन्म के 19 महीनों के बाद वे किसी अज्ञात वायरल का शिकार हो गईं और उस बीमारी से उनकी दृष्टि, वाणी और सुनने की शक्ति जाती रही।
3: श्रोताओं, हेलन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी। हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई और वो चुनौती ये थी कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो उन्हें सच में शिक्षा दे सके। उन्हें आखिरकार एक शिक्षिका मिल गई जिनका नाम था मिस एनी सुलेवन।
2: उन्होंने हेलन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी जिसमें उन्होंने स्पर्श वर्णमाला यानी मैनुअल अल्फाबेट और हेलन केलर ने राइट हमसन स्कूल फॉर डेफ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की।
3: श्रोताओं, इसके आगे स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। हेलन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आती तो थी लेकिन वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि वह सामान्य बच्चों के साथ आसानी से पढ़ने लगी
2: जी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक हुआ और उन्होंने लिखना शुरू किया। हेलन केलर ने अपने संघर्ष के इसी दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने उन्हें बहुत प्रसिद्धि और उपलब्धि दिलाई। इस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। श्रोताओं, ये पुस्तक अब तक दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और लाखों करोड़ों विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा का कारण है।
3: श्रोताओं, अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम ना कर सकते हो। उन्होंने पूरे विश्व का दौरा किया और सन 1959 में भारत भी आई।
2: श्रोताओं, हेलन केलर ने अपने महान विचारों और जिंदगी के अनुभवों से ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखी। वे सामान्य स्नातक थी लेकिन उनके लिखने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें मानद डॉक्टरेट और मानद आचार्य की उपाधि प्रदान की गई।
3: श्रोताओं, हेलन केलर ने अपने जीवन की मार्गदर्शिका एवं टीचर यानी एनी सलीवन की मदद से कई महान लेखक जैसे कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर, नीत्शे और महात्मा गांधी आदि के साहित्य को पढ़ा, उनकी गहराइयों को समझा और कई किताबों का ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया
2: जी।
3: दुनिया के दिव्यांगों और स्त्रियों के लिए वे एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
2: सन 1968 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुंदर चीजें न कभी देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं।
3: और श्रोता, उनका दूसरा कथन है, हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि जो करें उसमें तन्मयता से लगे रहें।
2: जी हाँ साथियों, ये थी हेलन केलर के बारे में रोचक जानकारी।
3: उन पर हमने रेडियो कार्यक्रम भी बनाया है लेकिन ये जानकारियाँ अतिरिक्त हैं। श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
2: हेलन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: हेलन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है?
2: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर,
3: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इस पर आप अपना संदेश और उत्तर जरूर भेजें।
2: जी, तो अब चलते हैं उमंग प्रसारण के कार्यक्रमों की कड़ी में। श्रोताओं, कहते हैं कि एक चित्र में 1000 वाक्य होते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान भारतीय चित्रकार के बारे में जिसने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। हम कह सकते हैं कि उनके बिना भारतीय चित्रकला लगभग अधूरी है।
3: और श्रोताओं, वे महान चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। आइए सुनते हैं उनके जीवन वृत्त पर आधारित कार्यक्रम
2: राजा रवि वर्मा।
4: अरे अरे, तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
5: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
6: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था, वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
7: मंगला
8: हाँ?
7: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
8: ठीक है।
7: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
8: हाँ हाँ।
7: उठाकर मुझे दे।
8: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
7: हाँ,
8: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
5: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
7: ये हाँ, ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
8: अरे वाह।
7: और ये इसकी पूंछ।
8: अरे, तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
7: अच्छा ले, कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
8: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
7: ओ, बना तो सही। ले पकड़, कोयला पकड़।
8: ठीक है।
7: अब बना।
6: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
8: भाई
7: हा?
8: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
7: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
8: ठीक है,
7: चल चल चल चल चल।
8: हाँ,
7: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
8: हाँ, ठीक है, चल,
7: चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल,
5: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
9: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
6: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
10: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
4: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे

0: भी साथ लेते आएं।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई। नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है। रवि
2: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी। रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
3: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
4: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
4: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले, अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: पौराणिक कथानकों वाले चित्रों व देवी देवताओं के चित्रों का महलों से लेकर झोपड़ियों तक में आदर सत्कार हुआ। वो इसलिए कि उन्होंने इन चित्रों को प्रेस लगाकर छापा। ये चित्र छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आकार में छपे और कम मूल्य पर खूब बिककर घर घर में पहुंचे। सन 1906 में अपनी आयु के 58 वर्ष तक वो कला की साधना में बराबर लगे रहे। उन्होंने भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जो कार्य किया उसने उन्हें अमर बना दिया है। वो सचमुच चित्रकारों में राजा थे। भारतीय चित्रकारों में अकेले एकमात्र राजा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राजा रवि वर्मा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि प्रचलित साहित्य में सबसे अधिक चालाक किस जानवर को माना जाता है?
0: कुछ मैं बताऊं विमलेश जी?
1: हम्म,
0: मुझे तो लगता है कि लोमड़ी।

कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? उसने नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई। बच्चों, हमें हमेशा झूठी प्रशंसा करने से और झूठी प्रशंसा सुनने से बचना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चालाक लोमड़ी, और आपने ये भी जाना कि किस प्रकार की चालाकी चालाक लोमड़ी ने दिखाई।
2: बिल्कुल। और अब समय को देखते हुए आप सभी श्रोताओं से हम आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। कल फिर इसी समय
1: नए उमंग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी उमंग में। तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाए। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने वातावरण के बारे में जाना। हमारी धरती हवा यानी वात का आवरण ओढ़े है। वायुमंडल धरती पर गर्माहट बनाए रखता है। सूरज की पराबैंगनी किरणें और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं से हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल की अलग अलग परतें किस प्रकार अपना अपना काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल।

0: वसुधा
1: जी।
0: वसुधा अरे क्यों भाई, छुट्टी का दिन होने से आज भोजन की भी छुट्टी है क्या?
1: नहीं जी, भोजन से छुट्टी कैसे हो सकती है भला। हाँ, भोजन में देरी जरूर हो सकती है।
0: देरी? अरे भाई अब और कितनी देर है खाना तैयार होने में, मेरे पेट में तो चूहे टुकुर टुकुर टुकुर कूदने शुरू हो गए।
1: बस आप बच्चों को भी खाने के लिए बुला ही लीजिए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा।
0: अरे हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ मैं। अब सृष्टि, मानव, खाना खाने के लिए आओ जल्दी भाई।
2: लो पापा, मैं तो आ गई।
3: हाँ। पापा ये कार्टून शो देखकर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू कीजिए।
2: अरे मानव, सुबह से ही तो टीवी देख रहा है, खाना तो टाइम पर खा ले।
0: अरे हाँ मानव, खाना समय पर खाना चाहिए। चलो जल्दी आओ खाने के लिए, कार्टून शो तो दिन भर चलते रहेंगे।
3: क्या पापा, एक संडे का दिन ही तो मिलता है मुझे पसंदीदा कार्टून शो देखने के लिए, उसमें भी आप मुझे टीवी नहीं देखने देते हो।
0: बेटा पहले खाना खा ले फिर टीवी देखते रहना, चलो आओ जल्दी आओ।
3: अरे आप शुरू तो कीजिए, मैं अभी आता हूँ।
2: हाँ, आज तो खाने की बड़ी अच्छी महक आ रही है।
0: अरे सृष्टि बेटा, महक तो आएगी ही, आज तुम्हारी मम्मी ने रविवार का स्पेशल खाना जो बनाया है।
2: अच्छा, तो आज मम्मी ने खीर बनाई है, क्यों मम्मी?
1: हाँ, तुम सभी को खीर बहुत अच्छी जो लगती है ना, इसीलिए।
2: खीर का सबसे ज्यादा दीवाना तो मानव है।
3: खीर? अरे वाह मम्मी, मैंने सुना है कि आज खीर बनी है।
2: लो आ गया मानव।
3: मम्मी खाना तैयार है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
1: हाँ बेटा, तू हाथ पैर धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
2: मम्मी खाने के लिए विवेक भैया का इंतजार कर लेते हैं ना, सभी साथ में खाना खाएंगे।
1: पर विवेक तो 3-4 बजे तक आएगा ना।
0: हाँ सृष्टि, आज विवेक के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके दोस्त वरुण के यहाँ हैंडपंप लग रहा है, अरे वो तो काम पूरा होने पर ही आएगा।
3: मम्मी आज खीर बनाई है ना?
1: खीर के साथ पूरी भी है माना।
3: अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, खीर और पूरी।
2: अच्छा मानव, यहाँ तेरे मुंह में पानी आ रहा है और उधर नल से पानी बह रहा है।
0: मानव फिर नल खुला छोड़ आया, तो तुम्हें कितनी बार समझाया है नल को ठीक से बंद करके आया करो।
2: ना जाने इसे किस बात की जल्दी रहती है कि नल अच्छे से बंद ही नहीं करता।
3: दीदी मैं तो नल बंद करके ही आया था।
2: नल बंद करके तो आया था मगर आधा, जिससे बहुत पानी बह रहा था।
0: बेटा मानव, लोग तो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, और एक हमारा मानव है कि पानी की कीमत समझता ही नहीं, जब देखो नल ठीक से बंद ही नहीं करता।
1: अरे खाना लगा दिया है, खाना खा लो जल्दी से, बहस बाद में कर लेना। चलो बैठो मानव।
0: लो भाई लो। वाह भाई वसुधा, वेरी गुड।
3: क्या खीर बनाई मम्मी, वाह। मम्मी आज तो खीर का रंग पीला दिख रहा है।
2: पीला नहीं मानव, केसरिया।
1: मानव खीर में केसर डालने से खीर का रंग केसरिया हो गया है, समझा?
0: क्या बात है वसुधा, आज तो केसरिया खीर बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है भाई।
1: खीर में सूखे मेवे जो मिलाए हैं जी।
0: और वसुधा इसी बात पर ठंडा पानी पिला दो बस।
3: और मम्मी मुझे भी पानी का दूसरा गिलास देना।
1: दूसरा गिलास? क्यों, क्या हो गया?
3: वो इस गिलास की बाहरी परत गीली है, जरूर इस गिलास में बारीक छेद होंगे।
2: छेद नहीं है मानव।
3: छेद नहीं है तो फिर गिलास बाहर से गीला क्यों हो गया?
0: अरे मानव ये तो हमारे आसपास की हवा में मौजूद पानी है।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे आसपास की हवा में पानी मौजूद है?
2: हाँ मानव, गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला ये पानी वातावरण में उपस्थित नमी ही तो है।
0: मानव, और वातावरण की इस नमी को जल वाष्प या आर्द्रता भी कहते हैं।
3: पापा मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती है।
2: पापा जब तक मानव का ध्यान खीर खाने में है तब तक इसे कुछ समझ नहीं आने वाला।
3: दीदी क्या करूं, मुझे खीर इतनी अच्छी लगती है कि खीर खाते हुए मुझे दूसरी बातें समझ ही नहीं आती।
0: तो पहले खीर खाना।
1: अच्छी बात है ना मानव बेटा, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना चाहिए। गुड बॉय।
0: चलो चलो फिनिश करो जल्दी से, मेरा खाना तो हो गया, मैं तो चला टहलने।
3: मम्मी पेट तो मेरा भी भर गया पर मन नहीं भरा।
2: तेरा तो मन कभी नहीं भरेगा।
3: क्या दीदी आप भी।

0: अरे मानव, देखना तो कौन आया।
1: मम्मी, जरूर विवेक भैया होंगे।
2: भैया आप बहुत लेट हो गए आने में।
0: अरे विवेक, तूने तो 2 बजे का आने का बोला था, अब तो 5 बजने का।
3: अरे मम्मी, वरुण के यहाँ हैंडपंप का काम 4 बजे खत्म हुआ, इसीलिए लेट हो गया।
4: भैया तो क्या आप हैंडपंप लगा रहे थे?
3: अरे नहीं मानव, दरअसल वरुण के मम्मी पापा आज सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, इसीलिए अकेले होने की वजह से वरुण ने मुझे बुला लिया।
4: भैया तो क्या वरुण को अकेले में डर लगता है?
3: अरे मानव, वरुण और मुझे एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं वरुण के घर गया था।
0: विवेक खाना खा ले बेटा, चल।
3: मम्मी खाना तो मैंने वरुण के यहाँ खा लिया था। हाँ पानी पीऊंगा, बड़ी प्यास लगी है।
0: अच्छा अच्छा, मानव विवेक भैया के लिए पानी लेकर आओ।
4: मैं
0: हाँ, तुम जाओ
4: जी।
3: अच्छा सृष्टि, पापा कहाँ हैं?
4: भैया पापा आसन लगा रहे हैं।
3: आसन इस समय? पापा तो प्राणायाम और आसन सुबह करते हैं।
4: भैया मैं योग आसनों की नहीं बल्कि निद्र आसन की बात कर रही हूँ।
3: सृष्टि तुम भी ना, सीधे सीधे नहीं कह सकती थी, पापा सो रहे हैं।
4: भैया दुनिया गोल है, इसीलिए कभी कभी गोल मोल बातें भी कर लेनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: भैया ये लो पानी। और हम सब के लिए मम्मी चाय लेकर पधार रही है।
0: लो बच्चों गर्मा गर्म चाय।
3: लाओ मम्मी।
4: मुझे इस वाले कप में चाहिए।
0: इसी में लो।
3: क्या बढ़िया चाय बनाई मम्मी। पर आज वरुण ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी।
4: अच्छी मतलब बिना पानी वाली है ना विवेक भैया?
3: हाँ सृष्टि, वरुण ने चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और इलायची भी डाली थी, और हाँ दूध में पानी भी नहीं मिलाया था।
0: अरे पानी से मुझे ध्यान आया, हे मानव तू किचन का नल ठीक से बंद करके नहीं आया था, नल से पानी बह रहा था।
3: मानव जल की बूंद बूंद अनमोल है, इसलिए हमेशा नल को सही से बंद करने की आदत डालो।
4: अरे आप सभी लोग पानी को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो? कहीं मेरी टीचर बता रही थी कि धरती के लगभग 3/4 भाग में पानी है,
1: लेकिन मानव इस जल की 97% मात्रा समुद्री पानी के रूप में है, जो खारा होने के कारण हमारे पीने व खेतों में सिंचाई के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता।
3: और बाकी 3% जल का भी अधिकतर भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है।
4: भैया खारा जल तो नहीं पर हाँ बर्फ में जरूर खा सकता हूँ।
0: बच्चों चाहे दुनिया में जल की कितनी भी मात्रा हो पर हमारी कॉलोनी में तो नल एक दिन छोड़कर ही आता है, पानी की जरूरत पड़ने पर बेचारे हमारे विवेक को पड़ोस के हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है।
3: क्या मम्मी?
4: मम्मी खाना खाते समय दीदी कुछ हवा में मौजूद नमी की बातें कर रही थी ना, तो क्यों ना हम उसी हवा के पानी से टंकी को भर लें?
1: मानव ये इतना आसान होता तो हमारे देश में लाखों लोग सुबह से शाम तक पानी के लिए ना भटकते होते।
0: बिल्कुल, पहाड़ों और रेगिस्तानों में तो महिलाओं का आधा जीवन सिर्फ पीने का पानी लाने में ही निकल जाता है।
3: मानव मम्मी सही कह रही हैं, शुद्ध जल के लिए हमारे देश में लाखों लोगों को मीलों भटकना पड़ता है।
1: और मानव रही हवा में नमी की बात, तो वो तो सतही जल के सूर्य की गर्मी से बनने वाली भाप है, पानी भाप बनकर हवा में मिलता रहता है।
4: अच्छा तो इसीलिए छतों पर रखे पानी की टंकियों में ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि उनका पानी भाप बनकर ना उड़े।
3: अब मानव इसमें कुछ सच्चाई तो है, पर टंकियों को इसलिए ढक दिया जाता है ताकि पानी में कचरा ना मिले।
4: भैया मम्मी भी तो हवा में नमी बढ़ाती है, मम्मी जब चाय बनाती है तब चाय की पतीली से भी तो भाप उड़ती दिखती है।
1: माँ ही नहीं, हम सब हवा में नमी बढ़ाते हैं।
3: हाँ मानव, हमारी श्वसन क्रिया यानी जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं उससे भी तो हवा में नमी आती है।
4: भैया ठंड के दिनों में मेरे मुंह से भी तो भाप यानी नमी निकलती है।
3: हाँ मानव तू सही कह रहा है।
1: तो मानव समझे कि जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है,
3: और ये क्रिया वाष्पन कहलाती है, कुछ समझा?
1: ये भाप या नमी हवा की आर्द्रता यानी उमस को बढ़ाती है।
4: विवेक भैया फिर तो समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन में बेबात ही ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के जलस्तर बढ़ने का हल्ला मचाया जाता है। यदि इसी प्रकार जल भाप बनकर हवा में मिलता रहेगा तो बजाय समुद्री जल बढ़ने के समुद्र का अधिकतर पानी हवा में नमी के रूप में इकट्ठा होता रहेगा।
3: ऐसा नहीं है मानव, धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में और हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है।
4: ये तो ऐसा ही हुआ कि पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ जमाया और फिर उसी बर्फ को शरबत में डाला तो वो पानी में बदल गया, है ना?
0: हाँ मानव, दुनिया में अनेक घटनाएं नियमित होती हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूरज का रोज उदय होना, अस्त होना,
2: और जैसे मेरा रोज रोज स्कूल जाना।
4: मानव, तुझे तो एक दिन रविवार की छुट्टी भी मिल जाती है।
3: लेकिन पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा निरंतर जल से भाप बनती रहती है।
4: लेकिन भैया, हमें तो कार्य करने के लिए खाना चाहिए होता है, फिर धरती पर जल चक्र को भी तो कहीं से ऊर्जा मिलती है ना?
1: मानव, तेरा काम खाने से कहाँ चलता है, तुझे तो खीर भी चाहिए होती है।
3: और साथ में पूड़ी भी। मानव, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सभी को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जल चक्र को भी सूर्य की ऊर्जा ही चलाती है। सूरज की गर्मी से ही पानी की विशाल मात्रा जल चक्र द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है।
1: हाँ विवेक भैया, हमारे आसपास जल तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, जल का द्रव रूप यानी पानी और ठोस रूप यानी बर्फ और गैस मतलब भाप।
4: भैया, मुझे तो पानी का ठोस रूप यानी बर्फ अच्छा लगता है, गर्मी में राहत देने वाला, ठंडा सा।
0: मानव, जब तुझे सर्दी लगती है तब बर्फ याद नहीं आती?
2: तब मैं हूँ ना अपने बेटे को भाप देने के लिए। मेरा
5: किसे भाप दी जा रही है?
0: किसी को नहीं, अपने मानव के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं यहाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे विवेक बेटा, तू कब आया वरुण के यहाँ से?
3: बस अभी।
5: उनके यहाँ हैंडपंप से पानी निकला या नहीं?
3: निकला है बाबा।
5: गुड।
4: पापा, आज तो छुट्टी की शाम का मजा पार्क में चलकर लिया जाए।
1: हाँ, मेरी भी बाहर घूमने की बहुत इच्छा हो रही है पापा।
5: वेल, तो बच्चों अपनी मम्मी से भी पूछ लो।
0: ये लीजिए चाय। बच्चों, तुम अपने पापा के साथ जाओ, आज घर पर मेरी सहेली पूनम आ रही है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है।
3: बढ़िया बात है मम्मी, आप अपनी सहेली से बातचीत करिए, मैं और पापा और सृष्टि और मानव पार्क में जाते हैं, 8 बजे तक लौट आएंगे।
5: मैं आप लोग चलो, मैं चाय खत्म करके आता हूँ।
0: मानव का ध्यान रखना सृष्टि।

0: लो भाई आ गया।
1: दीदी उधर देखो कितने सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं ना।
2: वो गुलाब के फूल कई रंगों के हैं देखो।
3: भाई मुझे तो चाचा नेहरू की तरह लाल रंग का गुलाब पसंद है।
1: पापा घर पर तो आप गमलों को रोज पानी डालते हैं, फिर वहाँ इतने सुंदर और बड़े फूल क्यों नहीं होते?
4: अब बेटा पौधों को पानी के साथ पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए ना।
1: पर पापा आप तो गमलों में खाद भी डालते हो, फिर भी फूल बड़े क्यों नहीं होते?
2: ऐसा इसलिए मानव क्योंकि हमने इन फूलों की किस्म ही नहीं लगा रखी, समझे? और वैसे भी यहाँ माली है रोज रोज की देखभाल के लिए। पापा तो सिर्फ शनिवार को ही अपने गमले देख पाते हैं।
3: और मानव यहाँ फूल छूने या तोड़ने पर माली पिटाई भी कर देता है।
1: भैया क्या यहाँ भी माली रोज पौधों को पानी देते हैं?
2: और क्या मानव, वरना पौधे मर नहीं जाएंगे।
1: पर दीदी ये सारा पानी तो मिट्टी सोख लेती है, फिर पौधों को पानी कहाँ से मिलता है?
3: अरे मानव पौधे मिट्टी से ही जड़ों द्वारा पानी चूस लेते हैं और साथ ही पोषक तत्व भी।
1: फिर पौधों से पानी कहाँ जाता है?
4: अरे बेटा पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों द्वारा फालतू पानी को नमी के रूप में हवा में छोड़ते हैं। बेटा जिस तरह आदमी व अन्य जीव सांसों के द्वारा हवा में नमी छोड़ते हैं, उसी प्रकार पौधे भी हवा में नमी छोड़ते हैं।
3: और मानव इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।
2: पापा ऊपर आसमान में देखिए कितने सारे पक्षी हैं, देखिए।
4: दृष्टि देखो पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं।
2: देखो
3: बाबा कहीं चल के बैठ लिया जाए। आइए यहाँ
2: पापा, पार्क में कितना अच्छा लगता है ना। ठंडी ठंडी हवा, फूलों की महक, वो चहचहाते पक्षी।
3: और सुबह सुबह पापा और मैं जब यहाँ घूमने आते हैं तब भी ऐसा ही नजारा होता है।
2: हाँ तब कभी कभी यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई दे जाती हैं, है ना पापा?
1: भैया कल से आप मुझे भी अपने साथ लेकर आ।
2: अरे चल चल, स्कूल जाने के लिए तो समय पर तैयार हो नहीं पाता, सुबह 6 बजे कैसे घूमने आएगा।
4: मानव अगर तू सुबह जल्दी उठ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हें भी साथ लेकर आएंगे।
1: अच्छा पापा, कल से मैं भी जल्दी उठकर आपके साथ घूमने आऊंगा।
3: मानव क्या सोच रहा है?
1: भैया मैं सोच रहा था कि हवा में जल के मौजूद होने पर जैसे गिलास की बाहरी सतह गीली हो जाती है, वैसे हमारा शरीर या अन्य पदार्थ गीले क्यों नहीं होते?
2: मानव हवा में उपस्थित वाष्प तभी द्रवित होती है जब वो हवा से कम तापमान की किसी वस्तु के संपर्क में आती है। जैसे गिलास में ठंडा पानी डालने पर गिलास की बाहरी परत गीली हो जाती है।

0: मानो क्या बात है, कमाल है मानो, कमाल खीर का असर है सब। ऐसे मानव बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अगर हवा में मौजूद नमी हवा की कुल नमी सोखने की क्षमता के बराबर हो जाए तब वाष्पन की क्रिया नहीं होती है।
1: अच्छा, जैसे मुझे भरपेट खीर मिल जाए तो फिर और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी।
2: वाह मानव, पार्क की खुली हवा से तेरा दिमाग भी खुल गया लगता है।
0: भाई कभी कभी ही तो मानव समझदारी की बात करता है।
1: अच्छा भैया, जल चक्र में वाष्पन के बाद कौन सी क्रिया होती है?
2: वाष्पन के बाद संघनन और फिर द्रवीकरण, है ना भैया?
3: लगता है सृष्टि ने खीर के साथ बादाम ज्यादा खाए हैं।
1: मेरे हिस्से के भी खा लिए लगता है।
4: क्या पापा, आप भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हो।
1: पापा, दीदी रोज जो इतना पढ़ती है इसीलिए इतना कुछ जानती है।
0: और तुझे हम रोज पढ़ने को कहते हैं और तू फिर भी नहीं पढ़ता।
1: हाँ, तभी तो ये मानव नासमझ है क्या दीदी।
3: अच्छा जो भी हो, ये सही है कि भाप में जल के अणु गैसीय अवस्था में होते हैं। ये भाप ऊपर उठती जाती है और फिर धीरे धीरे इसमें उपस्थित जल के अणु आपस में टकराते हैं जिससे इनकी गुप्त ऊर्जा कम होती जाती है और तब जल वाष्प के नन्हे नन्हे अणु आपस में जुड़ते जाते हैं।
2: मतलब संघनन की क्रिया आरंभ हो जाती है।
3: करेक्ट।
0: हाँ सृष्टि, लेकिन संघनन की क्रिया तब शुरू होती है जब हवा नमी से लबालब भर जाती है।
1: भैया, क्या संघनन की क्रिया धूल के कणों पर भी निर्भर करती है?
0: हाँ, धूल के कण अधिक होने पर संघनन की क्रिया तेज हो जाती है।
1: भैया, जैसे खाने की महक मेरी भूख बढ़ा देती है, ऐसे ही ना?
0: हाँ मानव, अब तो तुझे मेरी सारी बात अच्छी तरह समझ आने लगी
2: है। नहीं भैया, आपकी बात नहीं, मानव खाने की बात जल्दी समझता है।
1: भैया, संघनन की क्रिया भी क्या मेरी भूख की तरह लगातार चलती रहती है?
0: मानव तू और तेरी भूख। नहीं मानव ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बता, जब तुझे तेरी आवश्यकता अनुसार खीर मिल जाएगी तब तू और कुछ खाएगा क्या? और अगर खाएगा तो क्या होगा?
1: भैया, ज्यादा खाने से तो उल्टी हो जाएगी।
0: हाँ मानव, इसी प्रकार एक निश्चित ताप पर जिसे ड्यू पॉइंट यानी ओसांग कहते हैं, इस ताप पर वर्षा की बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं।
2: अच्छा भैया, तो आप जल चक्र की तीसरी अवस्था यानी द्रवीकरण की बात कर रहे हो, है ना?
0: सृष्टि, संघनन के द्वारा जल के अणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है। एक निश्चित आकार के बाद जल धरती पर वापस वर्षा के अनेक रूपों जैसे वर्षा, ओले, हिमपात के रूप में बरसता है और ये क्रिया द्रवीकरण कहलाती है।
2: भैया, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रतिवर्ष जल चक्र द्वारा लगभग 40,000 घन किलोमीटर जल धरती से वाष्पित हो संघनन व द्रवीकरण के बाद धरती पर वापस गिरता है।
0: इस प्रकार वाष्पन, संघनन और द्रवीकरण द्वारा जल चक्र से जल की विशाल मात्रा धरती और हवा के मध्य चक्रित होती रहती है।
1: लेकिन भैया, जल में विलय लवणों का क्या होता है?
0: मानव, जल में विलय लवण वाष्पन की क्रिया में ज्यों के त्यों रहते हैं।
2: अच्छा, तो समुद्र में इसीलिए लवणता बढ़ती जाती है।
1: तो क्या धरती पर सभी जगह जल की वाष्प उपस्थित होती है?
3: मानव बेटा, अत्यंत सूखे रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर पृथ्वी पर हवा में जल वाष्प की मात्रा 0 से लगभग 4% तक होती है।
0: धरती के कुल शुद्ध जल का एक भाग का भी हजारवां भाग वातावरण में जल चक्र द्वारा वाष्प के रूप में मौजूद रहता है।
3: बच्चों, तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो अब घर चलें।
1: हाँ पापा, अंधेरा भी हो गया है।
3: मुझे डर भी लग रहा है।
2: मानव को खीर खाने की भी जल्दी हो रही होगी, है ना मानव?
1: दीदी, अब तुमने खीर याद दिला ही दी है तो अब घर तो चलना ही पड़ेगा।
0: चलो भाई, मुझे पढ़ाई भी करनी है।
2: हाँ, अब तो सूर्य भी अस्त होने को है।
0: अरे सृष्टि, इससे याद आया, धरती और हवा के बीच का ऊष्मा वितरण सूरज की ऊर्जा के सहयोग से ही संभव हो पाता है जिसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3: हाँ बेटा, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर जल चक्र नियमित चलता रहता है
1: और पार्क में भी गुलाब के फूल खिलते रहते हैं।
3: हाँ, सूर्य ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
1: लेकिन सूरज गर्मी भी बरसाता है।
2: मानव, धरती पर जीवन के लिए गर्मी भी तो आवश्यक है।
3: अरे चलो भाई, चलो घर चलो, शाम के ठंडे मौसम में गर्मी की बात अच्छी नहीं लगती।
1: लो, अब

0: उनका घर भी आ गया है शायद नल नहीं आया, मम्मी बाहर ही खड़ी है।
1: अरे क्यों वसुधा, नल में पानी नहीं आया क्या?
2: हाँ जी, कोई कह रहा था कि चौराहे की टंकी में पानी नहीं भरा है इसलिए नल नहीं आएगा।
0: मम्मी पता है आज हम पार्क में बहुत घूमे और अब तो मुझे भूख भी लग गई है।
3: मम्मी अपनी पानी की टंकी तो भरी है ना?
2: हाँ हाँ, क्यों?
3: बस नहाने की इच्छा हो रही थी।
2: तो नहा लेना बेटा, टंकी में इतना पानी तो है ही।
0: मम्मी आज मैंने वातावरण में पानी की उपस्थिति के बारे में बहुत सारी बातें जानी है।
4: हाँ मम्मी, आज विवेक भैया ने मानव को जल चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया है।
2: तो तुमने आज पार्क में घूमने के साथ साथ अच्छी बातें भी सुनी।
0: हाँ मम्मी, और अब मैं खीर खाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, मगर पहले नहा लूँ। कहाँ रखा है मेरा तौलिया?
2: अरे बाथरूम में, और कहाँ? अच्छा, जा अच्छा, फटाफट हाँ, जा,
3: जा। लो मम्मी, मैं तो नहा लिया, अब जिसे नहाना हो नहा ले।
0: मम्मी मैं भी आता हूँ।
2: अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो तुम बाथरूम से, मैंने तुम्हारी खीर लगा दी है।
0: मम्मी मैं नल टाइट बंद करने जा रहा हूँ, अब मैंने जल के महत्व को जान लिया है।
3: चलो भाई, अब अगर मानव जल संचय करना सीख गया तो फिर सारी समस्याएं दूर।
2: मानव खीर पर टूट पड़ा है, इधर जल्दी चलो वरना खीर संचय नहीं हो पाएगा।
3: चलो भाई चलो जल्दी।

0: धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी सुन रहे थे, हवा में जल।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
1: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
0: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
0: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
1: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
0: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
1: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
0: एस मतलब सीधा,
1: यू मतलब उल्टा,
0: एम मतलब मुट्ठी,
1: ए मतलब अंगूठा,
0: एन मतलब नाखून,
1: के मतलब
0: कलाई।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
0: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
0: सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा
1: जनहित में जारी।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज

0: में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो क्या हुआ? दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट

0: जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

जे ते धोगी ते तेनू जोगन होना पै जाऊगा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले

0: लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
1: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
1: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
1: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से, तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
7: शारदा 90.8 एफएम। मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
8: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
9: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जाओ।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या?

0: सच में इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: प्ले, क्या बात है,

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
5: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
6: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिलें और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें, कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें, हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
9: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
8: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
10: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
11: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
10: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
12: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
11: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।